अवीयक्षरधाम धीयवनिमा ऐश्वर्यमुक्तो लयीशोभे अक्षरसात सुंदर छवि लावण्यतेजोमयी कर्ता दिव्य सदा रहे प्रगटजे साकार सर्वोपरि सहजानंद कृपालुणे नित्य नमो सर्वावतारि हरि। मंगलमूर्ति महाप्रभु,

अखंड सौभाग्य गणी अमारा इच्छा उरे एज प्रभु जी मारी स्मृति रहो अंतर मात मारी। श्री स्वामी

योगी जी महाराज नी जय, प्रमुख स्वामी महाराज नी जय, दिल्ली अक्षरधाम महोत्सव नी जय। मुक्तानंद स्वामी ने महाराज नी प्राप्ति थई छे, एनी प्रतीति थई, अने प्रतीति थई एटला माटे एमने भगवानी आरती उतारी। जय सद्गुरु स्वामी आरतीनी शुरुआत छे, अने एज आरती में प्रत्येक आटे भगवानी जे मूर्ति निरखता निरखता आर्त हृदय मुक्तानंद स्वामी जे प्रार्थना करी छे, आरती उतारी से, महाराज नी मूर्ति निरखी से, अने एमने प्रत्येक आटे आटे महाराज ना स्वरूप नी विशेष प्रतीति थती जाए छे। जय सद्गुरु स्वामी थी करी अने छेल्ले कहे छे पुरुषोत्तम प्रगटनू जे दर्शन करशे, काल कर्म थी छूटी कुटुंब सहित तरशे। स्वामीनारायण संप्रदायनी अंदर, समग्र संप्रदायनी अंदर मुक्तानंद स्वामीए बनावेली आरती भगवानना स्वरूपने निरखवानी एक रीत, अने आरती उतारता है त्यारे केवी रीते आरती उतारवी एनी अद्भुत वात अपने आमां शीखवाड़ी छे। जे दिवसथी मुक्तानंद स्वामीए आरती उतारी ते दिवसथी अद्यपी पर्यंत संप्रदायनी अंदर तमाम संतो भक्तो महाराजनी आरती उतारता ए छबीने अंतरमां उतारी, अने जेवी मुक्तानंद स्वामीने प्रतीति थई हती एवी प्रतीतिनी प्रार्थना करे छे।

जैसे चांदी के श्री घनश्याम और को जो जपू नाम करले कटारी मेरी जीवा काटी डारी और लोकन की लाज करूं डरू जो न भक्ति चित्त धरो पाव के मध्य मेरे तन को प्रजारियो। अभी अद्भुत बात मुक्तानंद स्वामी पोताना अंतर माथी निकले छे अने सौने प्रतीति थाय छे के मुक्तानंद स्वामी ने महाराज सिवाय हवे बीजा कोई नो भार रह्यो नथी। पूर्ण प्रतीति एमने

श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। स्वामीनारायण हरे स्वामी बात करी जे कारखाना करवानी रीति महाराज कहेल जे सावज होय ते दिवस में तण तलपू नाखे ने तेमा आहार मळे तो खाए ने नाणा छे ते तो आखो दिवस दौड़ता फरे તેમ કારખાનું કરવું તે સાવજની પેઠે એક મહિનો કરવું ને પછી પાછું છ મહિને

जय, योगी जी महाराज ने जय, प्रमुख स्वामी महाराज ने जय। वचनामृत मध्यनो तेरमो तेजनु मध्यनु तेरमु तेजनु छे। स्वामीनारायण हरि संवत 378 ना श्रावणदी अमावस्याने दिवस तेज ने अमावस गई काले गई अमावस। अमावस शू हो, चंद्र केव हो, अर्धो पौणो कारो हो से चंद्र पण देखाती, चंद्र उगतो नहीं। लोग एवं माने ते आराम करे चंद्र अमावस हो, संपूर्ण सूर्य नो प्रकाश जो है ना आ बाजू अंधारू देखात नहीं। वर्षना तेज नु छे अने कई दिवसे शुरू थाय छे अमावस ने अंधारा में तेज देखाय। स्वामीनारायण हरि संवत 378 ना श्रावणी अमावस्या ने दिवस स्वामी श्री सहजानंद जी महाराज श्री गणराम बद्दे दादा खचना दरबार में श्री वासुदेव नारायण मंदिर श्री चाकड़ा पर विराजमान था। धोरो खेस पहेर्यो हतो तथा धोरी चादर ओढ़ी थी ने मस्तक पर श्वेत पाग बांधी थी और पोताना मुखारवनी आग मुनि तथा देशनारी भक्त ने सभा भराई बैठी थी। पछी श्रीजी महाराजे पोताना बे भोज ऊंचा उपाड़ी ने सर्वे छाना राख्या रड़ता था, छाना राख्या नानो बाळक होय ने एवुं वातो करता था अंदर अंदर। वातो जगतनी नहोती, आम चूंटणीनी ने दिल्लीनी वातो नहोती, पण संबंधी ज वातो करता था। तब महाराजे कहे हवे हूँ वात करूँ, तमे भगवानी ज वातो कहो हवे हूँ भगवानी वात करूँ। एटले आम हाथ हमरा पहेलाना आपणा गुरु ने पहेला ए आ रीते शांति राखता, आम हाथ करे एटले बधा शांत थई जाय। एटले महाराजे आ रीते आम कर्युं छाख्या, बोल्या नथी मोड़ेथी, बस आम दशांत थई गया। पछी श्रीजी महाराजे पोताना बे भुज ऊंचा उपाड़ीने सर्वे छाणख्या, पछी पोताना मुखारवनी आगर स्तुति कहीने बैठा रहे जे संत, ते प्रत्ये श्रीजी महाराजे मुक्ता हवा जे नम नता थाई गड़बड़ करता, स्तुति कहीने बैठा था। महाराज अंतर प्रकाश करो, वातों करो, ता स्वरूप महिमा समझाए, यही तो स्तुति प्रार्थना कहीं बैठा। आप आज दुकान में जवुं आम करूँ एम करता करता आईने बैठीए, अने घरे थी आता आता केटलू रस्ता में जोई नाखीए, कचरो भरी नाखीए, पछी आईने बधुं कचरो काढ़वामां समय जतो रहे, त्यारे कथा पूरी। घरे थी निकलो ने त्यांथी प्रोसेस शुरू करी पड़े, एक ज विचार हस मंदिर महाराज जो चंदना वाघा केवा हशे, मूर्तिया क्या शणगार हशे, शू हशे, त्यांथी घरे थी निकलता विचार आवे। अहीं आवता तो केटलो कचरो भरी नाखे बधुं, आम जो आम जोया सिनेमाना पाटिया जन जे रस्ता बधुं कोई सामले कई भर भर भर भर कर पी बधु काढ़वानुं। एटले घरे थी निकलो ने त्यांथी शुरू करजो आ पूजानी वात, पण स्नान करता ते वखत पूजानुं शुं कर्युं जोईए।